Eh, Mas, तेरी प्यार विच ये हिरदा किन तड़पदा है, इन्हां अखां दे विच नींदर नहीं पैंदी, तेरे प्यार विच

तुणी वचार की वेखना है बाबा फरीद जी। देखो किड्डी लंबी आस का इजहार कर रहे हैं। उसनू उड़ीकद्या उड़ीकद्या उसकी जाद दे विच की हाल हो गया है। शरीर भी इन्हें पिया है जिनी मुर्दा लाश पई हो। काला ने देखिया मुर्दा लाश पई है। इस शरीर नू आके तोड़ तोड़ के खा रहे ने। फिर भी मुख दे विचों की वचन निकल रहे ने। ए दुई नैना मत तोड़। मैनू आस है मैनू भरोसा है वो जरूर दर्शना दी दात बखेगा। बेशक सारा ही शरीर खा जाओ मेरिया अखां नू कुछ ना आखना अजे मैं अपनी मालक दे दर्शन करने ने।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392।
1: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
0: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

ना कोई हो रहा ना कोई हो रहा जमीत कमर जा ना कोई हो रहा ना कोई हो रहा जमीत कमर जा ना कोई हो रहा ना कोई हो रहा गुजरी

पटने पटने तो गोविंद ने पटने तो चल के नंदपुर डेरे लाए या बूटा सिखी दा पंज प्यारे फेर सजाए या बूटा सिखी दा पंज प्यारे फेर सजाए फिर पास जाके

0: 19 जून 1635 श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहलूर के राजा दीप चंद को 1,00,000 रुपया 57,000 नगद तार के इनी माया दीप चंद नू दे के धरती नानकी चक नू खरीदिया। माखो वाल पहला नाम सी नानकी चक, दूजा नानकी चक का तीजा नाम सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आनंद साहब की बाणी के नाम से श्री आनंदपुर साहब रखिया। इस आनंदपुर साहब की धरती उत्ते 9 साल की उम्र गोविंद राय ने अपने पिता को दिल्ली और शहीद होली तोड़िया। पहली खून की होली सिख इतिहास में खेली गई। भावें इस तो पहला एक होली गुरु अर्जन देव साहब खेल चुके सन, एक दूजी होली थी जिहड़ी चादरी तोक अंदर बरती सिख इतिहास का वड्डा पल। एक पंजाबी का शेर कहिंदा दिल्ली चावली चौक के थरे उपर तेरे इश्क की लोगों तस्वीर वेखी। दिल्ली चावली चौक के थरे उपर तेरे इश्क की लोगों तस्वीर वेखी। चट्टी गई ना मुगल सरकार पासों तेरे सिर भी ऐसी तजीर वेखी। तेरे लहू नू चुम गया साफ पासी अपने रंग की बदो की तस्वीर वेखी। लाल किले के मूर्ख सुल्तान ताई ओदी लाल का हर एक जमीर वेखी। इस आनंदपुर तो पिता नू तोड़िया, इसे आनंदपुर च हजूर दिया शादियां हुई, इसे आनंदपुर साहब हजूर ने कई विसाखियां मनाईया, हजूर के घर 4 साहबजादे पैदा हुए, हजूर ने कई होले महले इसे धरती से अपने जीवन में खेडे। मेरे कहिए वाले ने 33 साल इस पावन धरती से अपने मुबारक चल पाए।
1: जगते रहन के जग ते मशाल वांगू होए करत ते बेमिसाल तेरे, जसे होए करत ते बेमिसाल तेरे।

0: आनंदपुर दर्शन पावा मेरे शहर शाद जिते चल पाले ओ मिट्टी चुक मस्तक नर नामा ओ मिट्टी चुक मस्तक नर नामा जबरी ते जुलम नु पेड़ वाला जबर से जुलम पाने खातिर लाई चोट नजारे जसमेश जी ने ठंडा कौम का खून गरमा दिता ठंडा कौम का खून गरमा दिता पाके गर्ज प्यारे दसमेश जी ने पाके गर्ज प्यारे दसमेश जी ने मन शाहत प्रेम नाल तृप्त होंदा मन शाहत प्रेम नाल तृप्त होंदा और तेरे वले ठंडिया हवाना तन तन है तू आनंदपुर दिए धरती याद करके तेरे गुणगावा ओ याद करके तेरे गुणगावा
1: केसगढ़ साहब का पवित्र किला जिथे खालसा पंथ की साधना हुई जिस धरती ने हमेशा खालसा पंथ को अगवाई दी है हर मुसीबत के समय के केसगढ़ साहब की लार भी भोले से पंजाबी का महान कवि बिधाता सिंह तीर एक बड़ी सोहनी गल लिखदा केसगढ़ की लार भी भोले से लाटा निकलिया जदों परिवार दियां करगी होरे दी तेग ने चिगारे छड़े उन्हें लहूजा थू के रूप आख्या एक फौजी मन करदी है मेरी तलवार बिधाता सिंह तीर लिखदे मेरे सोहने शब्दों में केसगढ़ की लार भी भोले से लाटा निकलिया जदों परिवार दियां हैसन लड़क दियां तेग की धार अंदर हैसन लड़क दियां तेग की धार अंदर जब तेज तेगा भाई धार दियां जब तेज तेगा भाई धार दियां हर जीवन

0: సంకీర్తన మహిమా
1: నార శాలతే శివాదా కీరా
2: खालसा पंथ ने होला महला बना लिया। होली एक त्योहार है हिंदिया का, हर वरे आ जाए हमेश होली। विधाता सिंह पीर अपने शब्दों में लिखते हैं, होली एक त्योहार है हिंदिया का, हर वरे आ जाए हमेश होली। खेल खुशी खेरे एस तो उड़ गए ने, गिरावट आ गई है। खेल खुशी खेरे एस तो उड़ गए ने, बढ़ गई है वैर रोग कलेश होली। बन गई है वैर विरोध कलेश होली। रब्बा खेडनी आज हिंदिया नू, रब्बा खेडनी आज हिंदिया नू, जिवें खेडी सी मेरे दशमेश होली, जिवें खेडी सी मेरे दशमेश होली। ठके शाही दा हुक्म मंदार ने बादशाहियां जला शस्त्र विद्याला अनंतपुर नू केंद्र बनाने वाला रणजीत नगारे उत्ते

सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने चांदनी चौक विच खून की होली खेली। विधाता सिंह तीर ने उस खून की होली ने अपने शब्दों में लिखा, इन्ना जोश आया उसके दिल अंदर, इन्ना जोश आया उसके दिल अंदर, ऐसा रंग भरिया उसके शौक अंदर, ऐसा रंग भरिया उसके शौक अंदर, उन्हें अपनी तेग बहादुरी का, उन्हें अपनी तेग बहादुरी का होली खेल ली चांदनी चौक अंदर, होली खेल ली चांदनी चौक अंदर। खेल जही होली घोली प्रीत दिल दी, खेली जही होली घोली प्रीत दिल दी, दुनिया कर दिती दार धार उसने चमकाओ की गड़ी च होली खेली गई। अजीब ते जुझार दे खून की होली खेली जही होली घोली प्रीत दिल दी, दुनिया कर दिती दार धार उसने लूनू पिया इतिहास का दसदा होली खेती सी कदे, चमकार उसने होली खेती सी कदे,

यार दो मिलने दो देने एक पलड़े रख के धर्म अपना एक पलड़े रख के धर्म अपना एक दूजे पलड़े च जिंदगी बोल देने एक दूजे पलड़े च जिंदगी।

काम, क्रोध, मोह, लोभ ते हंकार, ये पंज विशे विकार आम मनुख नूं मनुखता तो दूर लै जांदे ने ते मनुख दुखां दी दलदल विच धस जांदा है। इन्हां तो बचण लई शायर इंज अर्ज करदा है।

कल केवल नाम आधार। चार युगां दा प्रचलन साढ़े देश दे आदि काल तो मनिया जा रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कलयुग उत्तम युगां माणी। कलयुग श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है। लेकिन आम आख्या जांदा सतयुग उत्तम युग है, सतयुग श्रेष्ठ युग है, सतयुग जीवन का लक्ष्य है। ये दोवें गल्लां अपने आप दे ठीक ने। गर्भकाल का बच्चा निश्चिंत है। आदि काल दी जिहड़ी मनुखता सी ओ निश्चिंत सी, चिंतातुर नहीं सी। बाबा आदम चिंतातुर नहीं सी, कारण जीवन दीयां लोड़ां बिल्कुल सीमित सन, बिल्कुल सीमित सन। कबीले का बोझ, परिवार का बोझ मनुख ते नहीं सी। मनुख संतोखी सी पर स्वभावक सी, मनुख सतवादी सी तो मैं ए उसका स्वभाव से उन्हों लोड़ ही नहीं सी मिथ्या दी, झूठ दी। लिहाजा आदि मनुख सतयुगी सी, जिन्हों सतगुर इंज कहिंदे ने सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथ वाओ। जब जीवन का लक्ष्य सत सी, सच्चाई सी, तो प्राप्ति का साधन संतोख सी, मनुख संतोष सी, मनुख सतवादी सी। ऐसा जो जी रहा सी प्राकृतिक रूप से जी रहा सी, इहदी कोई मेहनत नहीं सी, इहदी उपलब्धि नहीं सी। जैसे गर्भकाल के बच्चे की निश्चिंत होना और परम रस विच होना इहदी उपलब्धि नहीं है, इहनू दान के रूप में प्रकृति चो मिले, परमात्मा तो मिले, इस करके निश्चिंत है। मन का टिकाओ है तो रस बने हुए, क्योंकि खिंडाओ के कोई साधन ही नहीं है। इंद्रियां दे तमाम दरवाजे बंद हैं। तो सतयुग की प्यास मनुख दे प्राणा विच है, सतयुग की तड़प मनुख दे प्राणा विच है। वाकई गर्भकाल का बच्चा हर वक्त महारस विच है, महा आनंद विच है। और इस तो इलावा महाशक्ति दे बोध विच भी है, कारण खिंडाओ का कोई साधन ही नहीं कि शक्ति का संग्रह अंदर हो रहा है। शक्ति खिंडदी है कोई अखां दे राही, कन्नां दे राही, बोलण दे राही, रसना दे राही, त्वचा दे राही, नासका दे राही। ज्यादा शक्ति जायल होंदी है, दौड़दी है, भजदी है अखां दे राही। यही कारण है कि वेख वेख के मनुख थक जाता है, क्योंकि शक्ति बहुत जायल हो गई। बोल बोल के मनुख थक जाता है, शक्ति का निकास बहुत हो गया। सुन सुन के भी मनुख थक जाता है, शक्ति का निकास बहुत हो गया। चल चल के, कर करके मनुख थक जाता है। गर्भकाल का बच्चा ना कुछ कर रहा है, ना चल रहा है, ना वेख रहा है, ना बोल रहा है, ना सुन रहे है, सिर्फ अपने विच लीन है। तो शक्ति का संग्रह हो रहा है। शक्ति रोज रोज छिन छिन वधी जा रही है। एकाग्रता बनी हुई है, क्योंकि खिडाओ दे कोई साधन नहीं, तो महारस भी बने हुआ है। रस मन की एकाग्रता दे चाहे न कि किसी विषय वस्तु दे चाहे। जिथे मन टिक जाता है रस बन जाता है, और सदीवी टिक गया तो सदीवी रस की प्राप्ति हो गई, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो गई,
तो गर्भकाल का बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, गर्भकाल का बच्चा संत है। हर बच्चा परमात्मा की तरफों भगवान होके आंदा है और हर जीव संसार तो रुखसत होने लगया शैतान की तरह जाता है। भगवान की तरह आया, शैतान की तरह रुखसत आंदा है तो भगवान दे घर, भगवान का द्वार बंद मिलता है उसनों। कारण भगवान ने कहा कि मैं ते अपने जैसा तेनू भेजिया तो बिल्कुल उल्ट होके आ गए, बिल्कुल विपरीत दशा बना के आ गए। इस कोई शक की गुंजाइश नहीं, हर बच्चा भगवान की तरह आउंदा है और करीबन करीबन कुछ एक नु छोड़ के हर मनुख शैतान की तरह रुखसत आउंदा है। ये मनुख का दुर्भाग है कि शैतान की तरह रुखसत हो रहा है, ये इसकी खुशकिस्मती है कि भगवान की तरह आया है। ये गल वखरी है, जीवन भर मनुख भगवान होना लोचदा है। ऐसी शक्ति चाहिए है जो कभी कमजोरी से ना बदले, इसे दा नाम भगवान है। ऐसा रस चाहिए है जो कभी बेरस ना होवे, ऐसे रस दा ना ही परमात्मा है। ऐसा धन चाहिए है जो रोज रोज वद्दा जाए वद्दा जाए, ऐसे परम धन दा ना ही परमात्मा है। प्राणा विच प्यास परमात्मा दी, पर प्यास बुझाण दे साधन गलत। जैसे रेत दे फक्के मार के प्यास नहीं बुझाई जा सकती, पानी नाल प्यास मिटेगी। भोजन छक के ही भुख मिटेगी, अग दे अंगारियां नूं मूंह विच पा के अग भुख नहीं मिटन लगी, उते अग मूंह नूं भी जला के रख देगी। गलत साधना दे नाल मनोरथ की पूर्ति नहीं आती, छोटे साधना दे नाल मनोरथ की पूर्ति नहीं आती। चाहे लक्ष्य मनुख कितना ही वड्डा रख लवे, महान शक्ति चाहिए, महान रस चाहिए, महान आनंद चाहिए, महान सुख चाहिए। लक्ष्य ते हर मनुख वड्डे वड्डे रखता है क्योंकि उसके अनुभव च है, लेकिन साधन या तो जुटा नहीं पाता, या साधन छोटे आते हैं, या साधन गलत होते हैं, जिस कारण करके चाहत सुख दी जीवदा दुख दे चाहे। चाहत परम शक्ति दी और महा कमजोर, ऐसा वो अनुभव करता है। भावे जीवन दी भज दौड़ इनू बहुत कुछ प्राप्त करा देंदी है, लेकिन बहुत कुछ दा प्राप्त करना इंज होंदा है जैसे कुछ भी नहीं मिलता। बहुता धन प्राप्त करके एक लाभ है, बहुत वड्डा लाभ है, कि अंदर दी निर्धनता झलकन लग पैंदी है। बहुता अमीर होने का एक लाभ है, एक लाभ है कि अंदर दी गरीबी झलकन लग पैंदी है। एक गरीब मनुख नो अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी क्योंकि अजे विचारा बाहर दी गरीबी च उलझिया होया, अजे बाहरों भी गरीब है, अजे बाहर दीआं समस्यावां इसकी हल नहीं होईआं। अगर एक बैरूनी तौर पर गरीब है कि उन्हों अंदर दी गरीबी दिखाई देन लग पई है, ये उसकी पूर्वली तपस्या होगी, ये उसके पूर्वले संस्कार होंगे जैसे कबीर के नाम दे होने। लेकिन एक चोटी दे धनवान नो अंदर दी गरीबी ना दिखाई देवे तो समझ लेना चाहिए है इहदे कोल दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, सूझ बूझ नाम की कोई चीज नहीं है। मनुख होके एक पशु की तरह जी रहे है। बहुता ज्ञान प्राप्त करके, बहुता ज्ञान प्राप्त करके अंदर दी नासमझी झलकन लग पैंदी है, अंदर दा अज्ञान दिखाई देन लग पैंदा है।
ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਾਹਰਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ। ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰਵਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੱਸ।

सेवमन सुंदरम लिखा है। उस चरणे नु गुरु नानक देव जी का वचन है, सत सुहाण सदा मन च वो प्रकाश हो जाता है। वो किसका प्रकाश है, किसका चरणा है, जो आद अंत मद होए रहा थी, संसार दे पहला तो भी स्थिर, संसार दे बनन समय

हे विनंती सुन प्रभु मेरे, देहु नाम कर अपने चेर। दर्शन कैसी दिन तेरा, चित वो अंत नीच

रे गुर के शब्द नाम सवारे सदा आनंद रहे दिन राती गुण के गुणी समावणिया हौ वारी जियो वारी नाम सुन मन वसावणिया हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा हौ मैं मार मिलावणिया रहाओ हर जियो साचा साची नाई गुर प्रसादी किसे मिलाई गुर शब्द मिले से विछड़े नाही सहजे सच समावणिया तुझते बाहर कछु ना होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागन सच उपदेश समावणिया शब्द विसारन तिना ठौर ना ठाओ परम पूले जो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख विहावणिया लिख दिया कागद मत कोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे तै कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सत समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा आत्म राम प्रगास गुरते होवे हो मैं मैल लागी गुर सबजी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हौ वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गा

जन्म गवाया, मनमुख नाम चेतना आवे, बिन नावे बहु दुख पावणिया। जिन सिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। माज महला चौथा आद पुरख।

तिस रूप न रेख्या कट कट देख्या गुरमुख अलख लखावने आ रहाओ। तू दयाल कृपाल प्रभ सोई तुद बिन दूजा अवर न कोई गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावने। तू आपे सच्चा सिरजनहारा पवती परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावने। आम दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुद साला ही प्रीतम मेरे तुद बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावने। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह।

सच्चे भावे गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोबा पावणिया मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंकर लोभ महागुबारा फिर आवन जावणिया आपे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुरु सब दी सुख पावणिया माज महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

चरना थानी बाणी सर्व निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापे पूरे गुर कै सब सिंजापे जिन पिया सही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहजा सोई सुहेला अंग विनोद करे सदकेला सोतनवंता।

है, कौन सुगिरही कौन उदासी, कौन तो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन ने कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए किन बिद बिछड़े, ए बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अखर जित पावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। हों मैं बांदा गुरुमुख छूटा, गुरुमुख आवन जावन टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विछरै, गुरुमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अखर जित पावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणक बनाई आपे, आपे करे तराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर पलवंता ता

गुरमुख मन तन पावणिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावणिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार

सारा भक्ति पाए परे पंडारा दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावणिया अंध कूप से कंडे चाड़े कर कृपा दास नर निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्व में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंथन अंतर तुद नजर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर न जानिया जिसको तू प्रभ पया सहाई तिस पत्ती वाह न लगे पाई तू साहिब शरण सुखदाता सत्संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अठाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची।

मूल न मनो विसारी है रहाओ संता संगत पाई है जित जम के पंथ न जाई है तोसा हर का नाम ले

मस्तक जिसदे पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगन पाप चाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची तारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया तै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना

जा। हर जप जपे मन तीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए तै दूरे। शरण आवे पार जम की ता फिर काहे चूरे। चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। कट कट एक वर्तदा जल तल महियल पूरे। पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे। सब छाई खसम आप हर जप पई थरूरे। करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे। नानक रत्ता सच नाए हर वेखे सदा हजूरे। बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

जित पर हर कंस ना प्रगटे पाठ नगर से ग्राम सर्व सीधार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंस विहूनिया।

हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो। पलच पलच सगली मोई झूठे कंधे मोहो। इक हर के नाम बिन अगे नहीं है खोए। दया विसार भी गुचना प्रभ बिन अवर न कोए। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। वै खास सुहावा ता लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन।

तिने विछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मनन। हर जेठ रंगीला तिसणी जिसके पाग मथन, असार तपंदा तिस लगे हर नाम जिन्ना पाप। असार तपंदा तिस लगे हर नाम जिन्ना पाप, जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदीवास। दोए पाए विगुचिए गल पई सुजम

पास जिनको साधु पेटी है सो दरगे हुए खलास कर कृपा प्रभु अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभु तुझ बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता

प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत छड़ खड़ोते किने माहे जिन्स्यों लगदा हेत हाथ मरोड़े त

हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पौजल विषम करे।

पूरन सच भरे पार ब्रह्म प्रभु सेव दे मन अंदर एक धरे महादिवस मूरत

सच में है, सच में है, सच का सीध दुधान गुरुवे, सच का सीध दुधान गुरुवे, रंग प्रभु दिखाया, किरमाहिन सगरा तू मिटिया, मनोहर चलिया

निरंकार कर कर विखे नर निहाल सलोक पवन गुरु पाण पिता माता दर्द महत कर कर विखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल पर पांडव जी को कथे तंत नंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिव तिवकार विखै विकसै कर विचारु नानक कथन करड़ा सारु जत बारा तीर सुनियार हरण मत विद हथियार पौ फलागन तपताऊ पांडा पाऊ अमृत दित टाल कड़ी शब्द सची टकसाल जिनको नजर कर्म जनकार नानक नजरी नजर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्द महात दिवस रात दाई दाया खेल सगल जागत चंगियाईया बुरियाईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसकद काल नानक ते मुख उजले

ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਸਭਾ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਵਰਨ ਜਾ ਤੇ ਅਰਪਾਤ ਨਹਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਬੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤ ਕਹੇ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣੇ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਨ ਮੀਹ ਸੁਰ ਨਾਰ ਅਸੁਰ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ਼ੰਭ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਏ ਕਹਿ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਬੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਬੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਦਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਰਵਰ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤ ਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਵੇ ਨਮਸਤਾ ਜਬੇ ਅਦੇ ਸਿੰਘ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਸਤਾ ਸੁਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੁਖੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਖੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਜਾਜਰੀ ਛੰਦ ਦਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੂਹ ਹੈ ਪੋਹ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ ਬੇਖ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਅਧੇ ਹੈ ਬੇਹ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਦਰਮਾਨ ਹੈ ਨਦਾਨ ਹੈ ਦਰਬਰ ਗੈ ਸਰ ਗਾਏ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਵਰਣ ਹੈ ਪੂਤ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਗੰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਹੈ ਜੂਝ ਹੈ ਜੰਜ ਹੈ ਮੀਕਰ ਪੀ ਕੇ ਦੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਸੂਝ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਲੀਖ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਸਮ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਬਰਮ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਵਾਹ ਗਾਏ ਮਾਨ ਅਨਜਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ਼ੰਭ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਾਧੀ ਨਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਧੀ ਸਰੂਪੇ ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੀ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇਸ਼ ਬ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਬਿਰਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀਏ ਪਰਮੀ ਅਭੋਗੀਏ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇਸ਼ ਬ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਾਤੰਗ ਸ਼ਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟੇ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰਗ
सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समाप्त होने वासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अद उर्दर्दं अगंगो भारता पारं परम परमेश्वरं पुरुष बालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदीय पेदीय नामं कामं समस्त पराजी समस्त सदामं तेरा जोर जा श्री चंद जले हैं थले हैं पीता पे हैं प्रभु अजूंगा देश पेश है पजंग प्रयाद छंद अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाधि निदाने नमास्तव नरनाथे नमास्तव परमाथे नमास्तव गंजे नमास्तव पंजे नमास्तव काले नमास्तव पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाहे नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातंग बरसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा आर्य सिद्धिंग निवासी चरपट छंद दल प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग ला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग बेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद दल प्रसाद आद रूप अनाद मूर्ति अनुप्रख पार सर्व मंत्र मान देवा पेवाद उदार सर्व बालक सर्व कालिक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराज ही उदूधर प्रसाल नाम ठाम न जा जा करु रंग न रेख आद पुरुख दार मूर्त जो नाद सेख देश और न पेश जा करु ब्रख न राग जत्र तत्र दिशा विश्वास ही फैले अनुराग नाम काम हीन बेगल दाम न जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तथाहि एक मूर्त अनेक दर्शन केन्द्र रूपन एक अखिल खिल अखिल खिल अंत को फिर एक देव पेव न जानी जे बेदर्क देव रूप रंग न जात बाद सो जानी कह जे बहुत आत्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जाक मानी प्रतीन लोक चौदह के विखे जग जापी जय जाप आदि देव अनाद मूर्त सब सब जय ताप परम रूप पुनी मूर्त पुनमुख पार सर्व स्वयं भजन हार कालहीन कला संयुक्त कल प्रख देश परम दास परम रात पूजला कपेश अंग रंग रंग जग जद जद पदन राम गर्भ गंजन उठ भंजन मुक्त दायक काम आप रूपामी कान अस्तिक पुरखूत गर्वगंजन सर्वंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंगनात्मक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायक सर्व गोप्रत पारु सर्वकांत सर्वहंत सर्वदेन पेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंगर रेख परम वेद प्राण जा कहे नेद पाक्त नेत गोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बहुत चित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्दन नाश अजन बाहशानशाह राजन राज पानन पान देवान देव इंद्र देवान देव उपम महान इंद्राण इंद्र बालन बाल रंकान रंग कालन काल अनुभूत अंग अपापांग गात्म जपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम आत दुत प्रचंड अमित गति अखंड अलिष्ट कर्म अदृष्ट धर्म सर्व प्रणाड्याण बाडे जा श्री शांत प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारिय पारे हरियंग करियंग नामे कामे भजंग प्रयाद छंद जदर चकर करता जदर चकर हरता जदर चकर दाने जदर चकर जाने चतर चकर भरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए जा श्री शंभ न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न गाय अजन्म न जाये न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिष्ठाधीशा दृशा गृशा भगवती शंद प्रसाद कथते क्या सज देशा क्या बज बेसा क्या गंज कर्म है क्या बंज भ्रम है क्या बज लोका क्या दसो क्या दूध करना है क्या भूत करना है
फिर राज प्रभाएंगे धर्मंग जाएंगे शोक वर्णेंग सर्वा वर्णेंगे जगत कृतियंग क्षत्र क्षत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप है ज्ञान पानूप है के आदो देव है के आप पेवें के चतरंग विहीन के कह दीन है के रोजी रजा कर ही मेरे हाय कह के बाक भी आवें के गैबुल गैवें के आप बुल गाय के शान शाएं के कारण को निंद है के रोजी दहन है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कलियां के सर्वंग दलियां के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गाने हैं के सर्वत्र पावने हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र माने सदैव प्रधाने आएंगे सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मन है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंगली मैं के परमंग फीमा है के अगलो लाम है के साहब कलाम है के उसनो बेचू है तमाम रजू है हमेशलो सलाम है सली कदम बधाम है ग्रीवल सकाता है ग्रीवल परास्ता है बुलंदल मकान है जमीन जमान है तमीजल तमाम है रजू अनुधान है हरी फल जी मरिया जगी नैने गल रंग है बेदा पांग है जी जो नवाज है ग्रीवल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है पर भगत प्रभा है सुजोत सुधा है सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है समाज सुभराज है सदा सदा सर्वसाज है समाज सुसलाम है सदैव काम है निर्वाह स्वरूप है गाध अनूप है अंगाध रूप है नाद स्वरूप है नंगी नाम है त्रिपंगी दल काम है त्रिवर्ग त्रवादे गंजे गाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा निरागे त्रिपुग स्वरूप है सजय सुदायक नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोकत प्रवाह है सदैव सदा है विभुत स्वरूप है प्रजोत अनूप है निरोक्त सदा है विभुत प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोत अनूप है चाचरी छंद भंग है नंग बेखलिग परमा कर्म नाथ जगाद है जय जात जन्म वर्ण पूजा वर्ण गंजा पंज है

चाजरी संद पंख नंघ बेख लेख ब्रह्म कर्म नाद जगाद जय वय भूत दूध नासद दंध बंध अभगत विरक्त नास प्रकाश निजंत सुनंद लेख देख लेख बेख डाय समय गम नील नाद नसनत जाद जाद जरपुट छंद प्रसाद सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं द्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जूता सर्वमुक्ता रसावल छंद दव प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं निरूपे अपंगं भूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंग न पुत्र निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माता न जाते न पाते नृसांग श्रीका मित्वी गाय सदैव सदा है विभक्त प्रवाह है

नरसाकं श्रीकामितोमिका सदैवं प्रवाह जय अजाय भगवती शान्तौ प्रसाद किजार जूर है किसाज रहजूर है मेसल सलाम है समाज लगलाम है किसे के साहिब दिमाग है कि उसलो जराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दहन दें कि राज करे हम दें करीमल कमाल है कि उसलो जमाल है गनीमल खराज है करीमल नवाज है हरीफल सिकान है रासल बगान है कलंक प्रणास है समाज नवाज है गंजल गनीम है रिहाय करीम है समाज तुल जवाह के साहब गिराए कि नलक प्रणास है समाज तुल निवास है गंजल गनीम है रिहाय करीम है समातुल जवाह के साहब ग्राहे के नरकंग प्रणास है बैद तुल निवास है कि सरवल गवान है मीस और वन है तमाम तमीज है समात तुल जी जाए पारंग परमीश है समात तुल अधीस है रीसल रेखा है मीसल बेखा है जमीन जमा है मी कुल माह है क्रीमल कुमाल है कि जरो जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मित्तो सुभाष है कि आज विश्रूप है कि मित्तो भूत है कि मित्तो बसा है कि आदम प्रवाह है कि अचलंग नांग है कि मित्तो भंग है मद पार शंद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मधाम हर नर अभांज हर नर गांज हर नर प्रभांज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड भर नर मांड गण पवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जंगासन भंग उपमा पार गाद मितदार जल थल मांडो दिस विश पांडव जल थल महंत दिस विश बेअंत गण पवनाश द्रत धर त्रास राजन वाहि कैसदास ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरभर अकाल कर कर प्रणाम जजरण नाम अंश जगात जज नाद अन चंज गात अनरंज बात अण ठुट भंडार अण ठुट भंडार अण ठुट पारण अण ब्रण महंत दाता महंत अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत दा प्रसाद करुणालिया है हर कालिया है कल खंडन है मैं मंडन है जगत ईश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है जगत के धरण है जग के कारण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वभर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्राह्मण से है कल खंड से भरते पर है करुणा कर है जपा तप है जपा सपा सप है करता करता मृत अमृत है अमृता अमृता करुणा करता करता करता करता करता करता है धरणी द्रत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है करता करता अमृत अमृत है जपा करता है मृत अमृत है खल नर नायक है खल गायक है विश्वंभर है करुणालया है नृप नायक है सर्वायक है पवपंजन है रगंजन है रिपतापन है जप जापन है आकलन कृत है सर्वाकृत है करता कर है हरदार है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जास है भुजंग प्रयाद शंद नम सूर्य सूर्य नम चल चंद्रे नम राज राजे नम इंद्र इंद्रे नम अंधकारे नम तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नम बीज बीजे नमो राज सिंह धाम सिंह शांत रूपे नम ब्रह्म दत्तंग दत्तंग स्वरूपे नम योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नम मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति शुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नाद भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो भाग भांगे पंगी रूपे अनंगी नामे इतर पंगी तर काले अनंगी कामे एक श्री शांब अजय अलय भय भय भुव जुनाथ गाश गंज भंज लख भख गौ दयाल लेख पेखो नाम काम गाटा नाथ प्रमाथे योनि मुनि नाराग्य नरंगे न रूपे न लेखे अकर्म भरम गंज लेखे भुजंग प्रयात शंभ नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणाशे गंजल नामे समाज तुल निवासे रगाम बभूते समाज तुल स्वरूपे गुकर्म प्रणाशे सुधर्म बभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी क्रीमल कुंदास समाज तुल निवासी अजैब बभूते जैब गनीमे अजैब बभूते जैब गनीमे हरियां करियां गरीम रही मैं जद जगर वर्ती जद भूते हम
Sivam Sarvada Sarvajavute Dugalang Pranasidhyala Sarva Sadasanga Sadasanga Sange Pangama Bhute Chatar Chakar Varti Chatar Chakar Bhukute Suyam Pau Sivam Sarvada Sarvajavute Dugalang Pranasidhyala Sarva Sadasanga Sange Pangama Bhute Satnam Sri Vaheguru Sahib Jiyo Tav Prasad Svaiye Kovan Kaathad Guru Prasad Tav Prasad Svaiye Paatshah Dasami Sarav Kisod Samu Sudhan Ke Dekh Puryokar Jogjati Ke Sur Surardhan Sod Sudhadik Sam Samu Vanek Madhi Ke Sare Hi Desh Kare Dekh Rahe O Mata Ko Una Nikhit Pran Pati Ke Sari Bhagavan Ki Bhai Kripa Hun Te Krati Bne Krati Ke Mati Madang Jari Arsang Anu Bhajang Sarang Swari Kod Rang Kurang Se Kul Te Paun Ke Gaun Ko Jat Nawari Pari Pajan Ke Bhupali Ved Nyavasi Sana Jat Vichari Te Bhai To Kaam Bhai Bhupa Te Ant Ko Nangi Bhai Pazari Jeet Vrai Sav Desh Dishan Ko Vahit To Ulmer Jang Nagari Gunjat Kud Gyan Ke Sundar Hens Te Hej Raja Jari Pudha Bhavya Bhavan Ke Bhupata Kaun Kane Nahi Jat Vichari Saripa Saripa Bhavan Bhaje Bhavan Ant Ko Nangi Namastari तीर्थनान दयादमदान सुसंजवने वाले खब देखा है बेद प्राणक देव कुरान जमीन जवान सुबान के देखा है पौन हाज दिया दार सब सब चार हजार के देखा है श्री भगवान पर जीवन भूपत एक रति बने एक ना देखा है शोध सुबाद रंत सुबाद सुसाद सुनाद रजान दलहेंगे बारी गुमान परे मन में कार हो पर्वत पर खले नहा रहेंगे तो रीन मरो रमवासन है माध्यम दंगन मान मलेंगे सरी पाद सरी भगवान कृपा बेनो त्याग जान दान चलेंगे वीर पार बड़े बड़े आर बचारे सर के दार बचैया तोर तो देश मिलन वासन माते जान के मान मिलैया गड़गड़ंग दौड़ नहार सो बात नहीं जग जार लवैया साहिब सरी सब को शरण आए क जाच कान एक सो एक दवैया दान देव नंदन साजर भूत भवे भगवान जपेंगे जीव जते जल में पल ही पल में सब धाप थपेंगे पुन प्रधापन बाढ़ जैत तौन पापन के वो पुंज खपेंगे साधु समूह प्रसन्न प्रय जग सत्र सब हम लोग जपेंगे मान वेन्द्र गजेंद्र नरा तप जोंदर लोक राज करेंगे कोट स्नान गजारिक दान अनेक सोम्बर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पद अंत भजे जम भाज भरेंगे जे नर श्री पद के बरस है भाग दे नर फिर न दे तरेंगे कहां पर जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे भक्त हैं लगाए उन हाथ फिर रिय सास मंदिर ने लोग ऊपर लोग आए बास के बख्यान से बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैठ बताए हो साच कहूं सुन ले हो सब है जिन प्रेम की हो जनी प्रभु आयो गोब दान को पूजता है बास गोमर दान को पूजन दायो गुरु करे और जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो गोब दान को पूजता है बास गोमर दान का पूजन दायो गुरु करे और जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो पाठशाही दसवीं कवि वाच विनती जाओ भई हमरी करो हाथ दर्शा पूर्ण हो चित की इच्छा ताव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत बारा हमरे दोष्ट सब तुम काव आप हाथ दे मोहे बचाव सुखी बसाय मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर छन कर दे करे सब बैरन को आसन करे पूर्ण हुई हमारी आशा दूर भजन की रहे ब्यासा तुम्हें झाड़ को वरना ध्याऊं जो वर चाहूं सो तुम दे पाऊं सेवक सेख हमारे दारी है जन जन सत्र हमारे मारी है आप हाथ है मुझे भरे है मरण काल का द्रास न रहे है पूजो सदा हमारे बच्चा शरीर युग राख ले उम्र रखनहारी साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दर्शन के हंता दोहा बुरी जदर दंता काल भाई ब्रह्मा बब धरा काल भाई शिव जी उदरा काल भाई कर विष्णु पर गासा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जो की सब की यो वेद राय ब्रह्मा थी यो जवन काल सब लोग सुवारा नमन कर जाए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दांत जो सुनो बजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नाम शिकार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो
कटकट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत जीटी दे गुंजरिया स्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कटकट की बुटबुट की जाने जब उद करख कर दर प्रजा दर्द तब दे अपार जब या करख कर दो गहूँ तुम मैं मिलत दे दर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी वो जो चारे तो सब ही तेरे आलम जानत वेद वेद हरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नीलन आद संभ ताका मूढ़ विचार दुविधा जाको भेव न भाव दुविधा ताको कर वाहन मानत कहा मूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चिंत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा गेह बिद सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनुज रूपा रंग भय राव गए भूपा अंड जे रज सिद्ध जकीनी उदभुज खान बहोर राज दीनी कहूं फूल राजा हवा बैठा कहूं सिमट पयू संग्रह बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचाम पव आदि जुगाद स्वरूप सुजाम पव अब रक्षा मेरी तुम करो से कुबार संगरो रोटी दे अठव दुर्भाता सगल ने करुण काता जी अस्तु दसरणी परे दिन के दोष दुदवा मरे पुरख अपन पग परे तिहारी दिन के तुम संकट सब टारे जो वर्ग वार दे आए हैं राग काल नहीं आए

सगल सूरे दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह ठाकुर जियो पिंड सब तेरी दास तुम मात पिता हम बालक तेरे

जी ओढ़त है अपना कैसो करी पुकार, दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार। जी ओढ़त है अपना कैसो करी पुकार, दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार। साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, अणदन साहेब सेवी है अंत छड़ाए सोए, सुन सुन मेरी कामणी बारदार होए। दयाल तेरा नाम करा सतगुरवान जाऊं राव, सर्वं सचा एक है दूजा नाहीं कोई,

जिस आगे प्यारे जाए कहां राव। सेवी साहब अपना वर्ण जांचो कोए, नानक दांका दास है बिंद बिंद चुख चुकोए। साहेब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख होए। साहेब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख होए। साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद जुग जुग होए। वाहिगुरु जी का खालसा।

सत गावै। जे को अपनी शोभा लूरै साध संगे होमै छूरै, जे को जन्म मरण ते डरै सब जना की सरनी पै। जित जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते उच्चा, जाका मन हो सगल किरीना। हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना। पेखे सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन संप्रष्टिता। नानक पाप पुन्य लिपा, निर्तन को तन तेरु नाओ। नितावे को नाओ तेरा साओ, ने माने को प्रभ तेरु मान। सगल कटा को देवो दान, कर्ण करावन हार स्वामी। सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जानो आपे। अपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस तुम ते हो। नानक और ना जान सको, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म। हर को नाम जप निर्मल कर्म।

साजना के चर्च कथाष्टपति साधक सम्मुख दलहूत साधक संगमल सगली कोत साधक संग मिटा अपमान साधक संग प्रगट सो ज्ञान साधक संग बुझ प्रभ नेरा साध संग सभूत नेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कुपर जतन साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी नान साध की शोभा ब्रह्माय समानी साधक संग या गोचर मिला साधक संग सदा प्रफुल्ल साधक संग का वह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साधु संग हो सब की रेल साधक संग मनोहर बैन साधक संग नक तू तावै साध संग स्थित मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीता साध संग किस चौने बैर साधक संग ना बिगा पैर साधक संग नाही को मंदा साध संग जन परमानंदा साधक संग नाही हो ताप साधक संग तजा सव्याप आपे जन साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनाई साधक संग ना कबू तावै साधक संग सदा सुख पावै साधु संग बस्या गोचर लह साधु कह संग चरसा साधक संग बसै सानू

कोट सिद्धति जोगी कहीं कोट राजरस भोगी कहीं कोट पंखी सर्प उपाय कहीं कोट पात्र वृक्ष निपजाए कहीं कोट पौन पानी बैसंतर कहीं कोट देश भूमंडल कई कोट सस्या सून खत्र कई कोट देव दानविंद्र श्री छतर सब समग्री अपने तू तार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण समतर सात कई कोट के रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की अच जी वह कई कोट गिरी मेर सुवरण थी वह कई कोट जक नर प्रसाद कई कोट भूत प्रे सुपर मृगात सावते नेरा सब हूते दूर नान के आप ले पत्र भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर सुरुक निवासी कई कोट जन्म है जीव अमरह कई कोट बहुजौनी विरह कई कोट बैठ सही खाहे कई कोट कल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जह जह पाना तह तराखे नानक साहब किस प्रभ के हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्राप्त को खोजनते आत्म पार ब्रह्मते कई कोट दर्शन प्राप्यास तिनको मिलो प्राव्यमनाश कई कोट मंग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप तो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन

समाये आप उपदेश समझ आप आपे रचा सबका साथ आपकी नु अपन विस्तार सब कछ उसका ओ करनहार उससे भिन्न कहो पिछो संत संतर कै सोए अपने चले तब करनहार।

कोट मदे किना बिरल चीना भला भला भला त्रा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्री श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार स्पदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं चुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुख नरक मह पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखै ना कोई संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन क्रमाए संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच नचाए संदोखी का ता को नाहै नानक संत पावै तो पी गत पाए संत कनंदक मां अतताई संत कनंदक खंडक न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तहीन संत का निंदक दुखी हर दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डाला गय संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुख से डरै संत के दुखी को नाहीं ठाऊ नानक संत पावै तन मिलाए संत का दुखी अद बीचे टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान प्रमाइया संत का दुखी उजड़ पाइया संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सांस बिना मिट तपकी लोथा संत के दुखी की जड़ किसना है अपन भी जापे ही खाए संत के दुखी को वरना रखन हार नानक संत पावै तां लाए उबार संत का दुखी उंबल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यो पाव की तनहीं त्रापै संत का दुखी छुटै के ला ज्यो गुआर तिलखेत मह दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमित्या कहत किरत निंदक का धुरी पया नानक जो तिस भावै सो इच्छिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाइया संत का दुखी न मरै न जवाइया संत के दुखी की पूजन आस्था संत का दुखी उपचल न रास्ता संत का दुख ना तृष्टा कोई जैसा भावै तैसा कोई होए पया कीर्तना मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोए साव का तिसके ओ करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसै त्यागो सास ग्रास साव का शिवरता तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेला करना हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तजहु स्यान सोचनहु सिमरो हर हर राय एका सर मन रखु नानक दुख भरम पौ जाय स्वरी मन की टेक मिटती सब जान देवन कोई कै भगवान जिसका दिया रह अगाए बहुर ना तृष्णा लागै आए मारा राखै को आप मानु कै किस नाई हाथ तिसका हुकुम सुख तिसका नाम रखन परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिगना लागै कोई उस तक मन मै कर।

अंधकार दीपक परगासे नानक परमो दुख ते नासे तक माय ठानवत आई अंध पया दुख नाथे पाई जन्म मन के मिटन देसे साधु के पूरन उपदेसे भाव चुका निरपोहे बसे सगल ब्याज मन ते खै नसे जिसका साथ कृपा तारी सात संग जपना मुरारी सिख पाई चुके परम गवन सुनान कहार हर जसरवन निर्गुणा सरगुण पियो ही कला धार तिन सगली मोही अपने चित प्रव्याप बनाए अपनी कीमत आपे पाई हार बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर को सोयो पोत्र व्यार रंग पै प्रकाश साधक संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साधना चल बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक तन सारस्परी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाग समीप विसारु चरण कमल में उतारु कर्ण कर्ण सो प्राप्त समर्थ दृढ़ कर कहो नाम हरवत एतन संतो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकाश रखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चाकुन छुट्टा वह सो तनहार सेवा से पावे जिस कौन बाछ्या मीत सो सुख साधु संप्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पजहर की सरनी अन क्योंपावी रोग न जाए रोग मिटे अरव खुद लाए सर्व निधान मह नाम निधान जप नंदर कै प्रवान मन प्रभु दुहर कै नाय दैद सावता बैठाए सा को बिघन ना लगे कोई जां कर दै वस्यार सोए काल साती ठांडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बस्या नासी कहो नानक काटी जमपासी सत विचार कह जन साचा जन्म रह सु कचु कचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सन गुरुदेव त्यों रतन जन्म कहो उदारु हर हर सिमर प्राण आधार अनक पाप न छूत न हारे सुमत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बन चतना फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लगता वह मूर्ख मना सोतमी कुटंबर बनता इन ते कहो तुम कौन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कौन छुटकार आसस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझना बिगाना नाम विस्तार नानक पछताना गुर की मत तूले एने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कह त्रैत दत पावो सार भू सत हर को नाओ सह सुबह नान गुण गाओ गुण गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाय हो मैं बिफैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास बरा सरनाम संभाल छाट जनम सवली मना सासंग पावै सचना हर पूंजी संकरो व्यवहारियां सुख तर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जापे को सलाहे एक सिमर एको मनाहे एक के गुण गाओ अनंत मंतन जापे भगवंत एको एक एक हराप पूरन पूरो प्रव्याप अनक विस्तारे ते पहे एक रात प्राचित गए

हितावत कौनर कौसुक वंशावत आल जाल माया जंजाल हो मै मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अन प्रकार की ओबख्यान अपन खेला कर देखा खेल संकोच है तो नानक देखा जय आपके भगत है आप जय पसरा पासा संत प्रताप तू पाका अपह धनी उनकी सो बौन बनी आपै कौतक करे अंध चोज आपै रस भोगन निर्दोग जिस भावै तिसे अपना लावै जिस भावै तिसे खेल खिलावै बेसमार।

नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्रांतन का यह सुहाओ। आठ पहर प्राप्त खुनेरा, मिटा ज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाबो, मन इच्छे नानक फल पाबो। हलत पल दोलो सवार, राम नाम मंत्र उतार। पूरे गुर की पूरी दिख्या, जिस मन बसा ते सात प्रिख्या। मंत्र नाम जपोह लिवलाय, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह ने बह के तुम्हारी। एक काटे रखो मन माह, नानक बहु नया वह जाए। तिससे दूर कहाँ को जाए, उपराय रखन हार ते आए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी चुकै। जिस प्रभु रखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन हो वसुख। चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई नाम पहुँचन हार। तेरे ऊपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके काज पूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पिघत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक प्रमाण, अंतर जामी पुख प्रधान। जिस मन बसै सोहोत निहाल, ताके निकट नाया बतकाल। अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक कर ध्याया सलोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिग्री कट कट माए, अनतरंग।

त्याग तंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरह हर तन के पाल हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहित आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित तवाहु नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुंत कुमावत होत उधार आप त्रैलोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दन हद वाजै सुन सुनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महान कै माथे नानक उतरे तिन कै साते सन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेवा।

बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोई, सब दुख महता की गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी।

योगी अलाही अपनी जान दे के ना जाने होर कितने अनगिनत लोगां दियां जानां बचा के जा रहे हैं। सिखी दी नी सिखी दी बुनियाद असी अपने सिरां उपर चुक लीती है जो हमेशा चुकी रहेंगे। तो इउं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे साहबजादे जिथे सत्कारे गए जिथे माता जी का संस्कार होया अज भी उस स्थान नूं कहिंदे ने ज्योति स्वरूप। अज भी उथे ओ जोतां बलदियां ने अज भी उथे रोशनी हुंदी है अज भी उथे गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां दी जोत दा चरागा हुंदा है रोशनी हुंदी है अज भी ओह नूर प्रज्वलित हुंदा है। इस संबंध विच पिछों की होया फिर किसे दिन बेनती करांगा। तो हजूर कह रहे ने एक ही मर्दा वाली चार है एक ही मर्दा वाला काम है कि कोई आदमी अग दे चार अगर अंग्यारां दे ताईं चंग्यारां दे ताईं खामोश करे बुझा देवे ते नाल नाल फिर की के आतिश तमारा फरोजा कुनी ते आतिश जो आदमी अग नूं फरोजा चार च फेरे दमारा कहंदे ने प्रज्वलित करना करे अपने चार च फेरे जिहड़ा आदमी चार चंग्याड़ियां नूं बुझा के अपने चौगिर दे अग दे भांबड़ दे ताईं दमारा प्रज्वलित करे अग दा भांबड़ बाल लवे अपने चार च फेरे ओ कोई बहादुरां वाली कार नहीं करदा। शाह तू चार चंग्याड़ियां चार साहबजादे खामोश करके बुझा के आ खालसा पंथ भांबड़ अपने चार च फेरे बाल लीता है जेड़ा तेरे राज पाक ते हुक्म हासिल नूं स्वाह करन तो बाद भी इसे तरह बलदा रहेगा। जेड़ा इनू बुझाने की कोशिश करेगा वो खुद बुझ जाएगा पर ये भांबड़ किसे तो बुझाया नहीं जा सकेगा। अज का विचार इसे ही समाप्त करते हैं क्योंकि हजूर ने अपनी कलम नाल अपने चौहान सपुत्रां दी शहादत संखेप तौर पर बयान की थी। भावे असी ये प्रसंग सुनते हाँ पर हर विद्वान नूं जिवें जिवें गुरु बख्शिश करदा है वो उस तरीके नाल भेट करदा है। आप जी दे सामने छोटे साहबजादियां दी शहादत दा विचार पुरातन सिख हिस्टोरियन दे विचार नूं मुख रख के सामने रखिए। होईयां भुलां चुकां दी आपने खिमा बख्शिश करनी जिवें गुरु महाराज जी दा हुक्म है साडी इहो ही अरदास है। गुरु महाराज अपने पंथ नूं अपने सिखां दी हर बाबर क्या करन सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब है करतारा। पर फिर भी जिथे जिथे कोई हुंदा है थोड़ा थोड़ा ख्याल जरूर आंदा है दिन ये टेपां कित्थों मिलनगियां। मैं ते परदेसी आदमी हाँ जेड़े सिंह ते बजुर्ग टेप करदे ने इस स्थान वालों एक सारी कथा टेप हो रही है जिन्हां प्यार वालियां ने भी जफरनामे की चंडी दी वार दी कथा श्रवण करनी है। टेपां लैण दा मतलब हुंदा है सुनिए ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਟੇਪਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਸ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: बंदा कोशिश बंदा बहादुर जी यत्न करते रहे और नाल नाल माता सुंदर कौर जी दे पालक पुत्र अडॉप्ट किए हुए बेटे अजीत सिंह भी कोशिश करते रहे पर जेड़ा गुरु सी वो दुनिया के सामने जहरा जहूर रहा हाजरा जहूर रहा। माता सुंदरी जी नु ही पता लग गया असल पुत्र वो ही है मेरा जेड़े मेरे साहिब दा गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुत्र है खालसा जाना खो श्री जिसनु उन्होंने खुद अमर कहा है। हाँ उदो पता लगेगा शाह सच्चा कौन है ते झूठा कौन है जितया कौन है ते हारया कौन है। जी एक शेर होर पढ़
1: वगर ना तो रा फरमाश कुनद
0: कहने ने ओ वगर ना वगर ना तो ई रा फरमाश कुनद वगर ना जे कर ऐशा तू इस प्रकार किसे नु फरमाश भुलाना नहीं करेगा अपने गुनाहा नु किसे नु माफ नहीं करना करेगा। जी कहने ने फिर तेरे ताई भी हम भी तेरे ताई भी ओ अकाल पुरख वाहेगुरु फरामोश कुनाद नहीं भुलावेगा ओ तैनु माफ नहीं करेगा जे तू बेगुनाह नु खिमा नहीं करता माफ नहीं करता ते ओ यजदा एक अकाल पुरख वाहेगुरु भी तैनु भुलावेगा नहीं तैनु माफ नहीं करेगा फरामोश माफ करना भुलाना ओ तैनु भी माफ नहीं करेगा। इसलिए शाह जिसने तैनु ए राज भाग हुक्म हासिल दिता है ओने मैनु अपनी दरगाह विचों भेजा है ते जदों आखरी दिन आवेगा क्यामत दा दिन हमारोज ता उस दिन जदों खुदावंद करीम आप गवाह होवेगा ता सारा पता लग जावेगा जित तेरी होई है के मेरी होई सच्चा तू है जा मैं हाँ सच्चा झूठा कौन है ए ओदी हजूरी विच फैसला होवेगा। इसलिए आशा आपा दोवें मिलके खुदा दी हजूरी विच पहुंच के खुदावंद करीम तो फैसला लईए। इना शब्दा नाल अज दा विचार समाप्त है। दशमेश पिता जी कांगड़ दीना कांगड़ जिसनु हिस्टोरियन ने लिखा है पर दशमेश पिता जी कांगड़ कस्बे कुनादन दा नाम जिक्र करदे ने वर्णन करदे ने फतेह दा पत्र लिख रहे ने कुछ शेयर बाकी ने उन्हों दा आने वाले वीक विच विचार करन दा यतन करांगे। अगला हफ्ता भी कथा दा जो प्रोग्राम हुंदा है 7 to 8 बजे तक आपने खिमा बख्शिश करनी संतां वल्लों कथा विचार संबंधी जन सेवा आईए सच्चे पातशाह सरबादी कालना थाएं

थोड़े लफ्ज पढ़ पड़े, कोई फर्क है ना पढ़ पढ़ विच। एक पास आखते ने पढ़ पढ़ गड्डी ले दी, पढ़ पढ़ भरिए साथ, इतने आखते ने पढ़ पढ़ भावे मान, फर्क पै गया। कोई गल समझ पाए, इतने आख रहे ने पढ़ पढ़ भावे मान, दूजे पासे वह गुरु आख रहा कहता पढ़ पढ़ गड्डी ले दी, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खास, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल होर हो मैं चखना चाह। गल फिर आ गई, क्योंकि रब एक है, गुरु एक है, शब्द एक है, विचार एक है, एक बाणी एक गुर एको शब्द विचार, इसलिए गल फिर आ गई। जिहड़ी गल मेरा रब एक आखे, जिहड़ा जिहड़ी गल मेरा गुरु एक आखे, गल ते ओ सफल है, गल ते ओ सुननी, गल ते ओ पढ़नी, नहीं तो उहदे तों बिना होर हमें चखना चाह। दो पड़ पड़ विच फर्क है, बल्कि श्री गुरु साहब ने बाणी विच इत्थों तक आख दिता, कहने लगे वेद पाठ संसार की कार। यह तो किता बन गया, यह तो बिजनेस बन गया, वेद पाठ संसार की कार, पर पढ़ पंडित करें विचार, बिन बूझे सब हुए खुआर। पर पढ़ पंडित मुन्नी खाके, बिसंतर भव थके पेकता जी, दूजे भाए नाए नाओ कदे न पाएन, दुख लागा अत भारी, अंधे मूर्ख त्रैगुण सेवें, त्रैगुण सेवें माया के व्यवहारी। पढ़ तो गए, पढ़ाई है कौन, विद्या है, पर हो की रही है अज के युग की, मैनू जिसका कहानी है, है विद्या है, पर वो रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी का संसार जोड़ा है ना, इनके ही गुलाम होए फिरते हैं, तो हो इसलिए फिरते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में एक विद्या व्यवहारी बना लिया है। अज विद्वान की जबान खरीदी जा सकती है, बिहार बिकती वह चीज है जी, बिजनेस हो जी, बिजनेस हो बिकती है, अज विद्वान की जबान खरीदी जा सकती है, अज जबान विद्वान की कलम खरीदी जा सकती है, और दोनों चीजा बिक रही, विद्वानों नु लोग वरत रहे हैं चीजा से, आ बोलो अपनी मर्जी का गुरमत भी होना प्रचार कराने दे, कृष्ण अखी देख रहे हैं। ऐसिया संस्थावां पैदा हो गई ने जिहड़ी गुरु सिद्धांत नहीं मन दिया, ते गुरु सिद्धांत का उजलापन बर्दाश्त नहीं कर दिया, उन्होंने ऐसे लोग अज नहीं सदियों तो पैदा करने शुरू कर दिते कि भला गुरमत विरुद्ध प्रचार हो सके। बड़े लोग पैदा भी हो गए, अज भी खरीदे जाते हैं, अज विद्वानों कलमां खरीदिया जा रोजाना जीवन में अखी देखते हो, क्यों खरीदिया जाए, क्योंकि बिकती जाए, जी चीज बिकती नहीं वह कोई खरीदेगा क्यों, जी चीज अपनी है बिजनेस नहीं उन्होंने कभी कोई नहीं खरीद सकता। मैं एक बार एग्जाम्पल दी, थोड़ी दुकान से फर्नीचर पिया हो, हर कोई आके पूछेगा इन की कीमत है, की लेना है, दुकान पर क्या है बेचने वास्ते, तो जो कोई दोस्त थोड़े घर आए, थोड़े घर में सोफा बड़ा कीमती पिया हो, चंगा लगे, उनका हक है, तो उन्होंने पूछे इनका की लेना, तुम गल पै जाओगे, वो भले तू दुखा बैठा है, तो घर है, ये मैं अपने यूज नहीं, अपने पर्सनल वर्तों नहीं लिया है, मेरी चीज है, इनू तू खरीदन की गल से कीमत की गल क्यों की, मेरी तो ही नहीं। अजे तक पाठ बिकाऊ है, अजे तक विद्या बिकाऊ है अपनी नहीं, अजे तक रब बिकाऊ है अपना नहीं बनया, सब कुछ अपना एक राम राया, अज रब वेख्या जाता है, अज वेखन लई गुरबाणी ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश अनेक थावां ते हुंदे ने, केवल भला इनके बदले विच सानू की मिलता है, ख्याल करियो गुरु ने बाणी चाह दिता, कहन लगे अंधले मूर्ख त्रैगुण सेवें माया के व्यवहारी, ते अगली लाइन अंदर होर स्पष्ट कर दिते ने, कहन लगे अंदर कपट
अंदर कपट है। उधर भरन के ताई पाठ पढ़ेगा वाली के दस पढ़ केवल पेट पूजा वास्ते केवल रोटी कमाने लिए पाठ पढ़िया जाता है। अजे पाठ पढ़ के प्रजर्व किए जाते हैं ना भी दस पाठ पढ़ के रख लो जो कोई आएगा उनके नाम की अरदास कर देंगे माया लैके इसे भी हो रही है फैसला बन गया। गुरु कहते अंदर कपट पाठ अंदर कपट उधर भरन के ताई पाठ पढ़ेगा वारी जो केवल पेट पूजा का साधन। मेरा यह मतलब नहीं कि जेडे पाठ पढ़ने वाले ने उन्हें भी पेट पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इन्ना भरोसा होना चाहिए कि जिस मालिक की गल असी पढ़नी है सुननी है वह कभी मैनू भुखा नहीं रहने देगा। उनके लिए तो गुरु आख रहे हैं जिसने बख्शे सिफर सलाह नानक पातशाह ही पातशाह उनके पातशाही पैदा हुई जाने पर उन्होंने उधर पढ़ने का फिक्र पिया है। केवल इस व्यापार के रूप में पाठ विद्या केवल असी जो सामने देखने अज एक व्यापार बिजनेस का रूप बन गया तो गुरु ने यह गलबाणी भी चाहती कह लगे पढ़न पढ़न में यह अंतर उधर भरन के ताई पाठ पढ़ गवा। गुरु कहते मैं उस पाठ की गल नहीं करता क्योंकि उस पाठ नाल मेरे रब का हुक्म नहीं जुड़िया होया मेरे गुरु की सिक्ख्या नहीं जुड़ी हुई। जेड़ा पढ़ता है ना रब के हुक्म अनुसार हुक्म विच रह के उनके डर से भय विच जेड़ा पढ़ता है ना गुरु की सिक्ख्या के घेरे विच रह के जिस तरह गुरु ने समझाया गुरु कहते हैं ऐसा पढ़ने वाला जेड़ा है वह हमेशा पढ़ पढ़ के पातशाही पातशाह वाला माण प्राप्त करता है। वो उधर भी पढ़ता है उन्हें माण भी मिलता है।

क्यों सुने लागे सहज ध्यान, क्योंकि ऐसे सुनन पढ़न वाले दा ध्यान मेरे रब नाल जुड़दा है, प्रभु नाल जुड़दा है, उनके हुक्म नूं सहज विच कमांदा है, उनका नतीजा है निकलता है उस मालिक दे सारे खजानियां दा हिस्सेदार हो जाता है। रब आखदा है अब मेरे खजाने हुण तेरे ही नहीं, मेरी जेब च तेरा हाथ। आप गुरु दियां कहानियां साखियां सुनाने कि बड़े पटियालिया नूं आखिया चंगा मेरी जेब ते तेरा हाथ, बाबा निधान सिंह जी नूं आखिया मेरी जेब ते तेरा हाथ। साखियां पढ़ने कि सानू विश्वास क्यों नहीं आता, जदों असीं उंदे हो जाइए उंदे हुक्म विच जीवन गुजारीए उंदी सिक्ख्या दे अनुकूल होकर जिंदगी गुजारीए उंदी जेब ते साडा हाथ होगा, सारे खजाने उंदे कोल। एक विश्वास ही नहीं है, जिन्हों विश्वास नहीं हुक्म से वह हुक्म मनन वाला कि नहीं होया, जिन्हों हुक्म से विश्वास ही नहीं वह हुक्म सुनने वाला कि नहीं होया। इसलिए कहने लगे जेड़ा भगत जाना है उनकी निशानी यह है वो हमेशा विगास में रहता है, क्यों क्योंकि सारे खजाने का मालिक है, खजाने के मालिक नाल जुड़ चुका है, उनके विच अभेद हो चुका है, उनके हुक्म विच रह के अभेद हो चुका है। गुरु कहते हैं

मैं तेरी साथ नहीं चलूंगा, मैं तेरे बच्चे टुब्बी मार के तेरे बच्चों गुण प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे को टुब्बी मारन की तेरी गराई में जान की शक्ति कोई नहीं, तू बुरा को साथ देना। मैं इतने उस मसले को हल कर देता, कहने लगे जो तू हुकम जुड़ जाए, जो तू गुरु की सिक्ख्या सुन लें मन लें तो विश्वास कर उस गुणा के सागर की गहराई तक पहुंच सके। सुने छरा गुना के गा गा का मतलब हमारा पहुंच जाना, चंगी तरह किसी चीज में गा लें उनके प्राप्ति कर लें, उनके प्राप्ति कर ले। कहने लगे तू गुणा के सागर का गाने वाला भाव उन्हें प्राप्त करने वाला, उनके गुण दिया गहराइयां तक छानबीन करने वाला बन जाएगा, ये सुने ना जुड़ जाएगा।

क्योंकि सत संतोख ज्ञान वाले गुणों वाले जेड़े ने ओही शेख पीर ते पातशाह गुरमत च मन्ने जांदे ने। दुनिया दे शेख पीर पातशाह नहीं, होर पातशाह नहीं, क्योंकि एक ख्याल करो सत नाल ते ज्ञान नाल शेख ते पीर बनते हैं। गुरमत दे शेख पीर ओ ने जिन्ना को सत है ते ज्ञान है, पहली पौड़ी चाह चुके हैं। तो पातशाह वो बनते हैं जिन्ना को संतोख है। संतोख का दूजा अर्थ की है राज्य, राज्य ते राजा लफज की बने हैं पातशाह। राजा लफज कितों बने हैं? राज्य तो जिहड़ा रज्जिया ही नहीं राजा का दा, वो खवी को राजा हो सकता। ते रजन का दूजा अर्थ की है संतोख। इसलिए गुरु ने बाणी चाह दिता बिना संतोख नहीं को हो सकता। तो भुखा है, वो तो गरीब है, वो मंगता है। गुरु ने बाणी आख्या यह साड़ी भुल है कि असी नाउ फकीर पातशाह। लोग किन्ने भोले ने, एक मंगते नु बादशाह मनी, वो तो भुखा है। जिनी करप्शन भुखे करते हैं, जे रजे भी तो करते हैं, जे अंदर भी भुख नहीं मिटती, ता ही करोड़ों अरबों रुपए जमा ने अजे देशों विदेशों में होर जमा करने लिए, होर करप्शन करी जाते हैं, दूजों का खून निचोड़ी जाते हैं, क्योंकि भुख नहीं मिटती। तो भुखा जो पातशाह नहीं हो सकता, संतोखी पातशाह हो सकता, संतोखी राजा हो सकता। संतोख है नहीं तो गुरु कहने सुनने नाल जदों तेरे को सत संतोख ज्ञान आ जाएगा तो शेख पीर ते पातशाह हो जाएगा। पर दुनिया के लोगों की है, दुनिया नाओ फकीरे पातशाह, मंगते नहीं बादशाह की जाती है। मूर्ख पंडित नाओ जिन्हों गुरमुख का किसी चीज का जीवन अपने जीवन का भी ज्ञान नहीं, उन्होंने भी पंडित आखी जाते हैं। नाओ फकीरे पातशाह मूर्ख पंडित नाओ। गुरु बड़े खूबसूरत है कहने इल्लत का नाओ चौधरी, जरा जिन्ना ज्यादा इल्लती हो, जरा ज्यादा लाऊ चवे ए तोड़ भन कर सकता हो चौधरी। अज के जमाने फैसले बनी गए, बन गए फैसले। यह साड़ी भुल है, अभी चौधरी अपना किनू बनाया है अपना।